माने जने जरिंगर वाले उठें जाम जुने दोन थोड़ो से निरो काखते उड़ी गने बेरक दोन जो अदो भी तो हाइला रंग अन्ना कज उर माला रंग जाता ये ले सो आई उन्हीं थोड़ो हिलवे यहाँ दवा धोले बुल उंग चीर की वर्रागत नौ भेंग ये वे चीर की उरेंदुर मेरे बाज सुख चक सम्मादांग अशीर चीर में ऐने के चीर सोगा चींजे दत्तेराम बदना इज़ मोग दिन बोइनुले बुधालदाम बलजे